सत्यारे प्यारे साहब थाई ओए साहा जिना नाम दे प्यावन छकिया तरमे एक शीश देते सिखी सिदक नहीं आ रहा तना गुरमुखा गुरु दे प्यारे सिंगा सिंगणिया दी

अगर अस्प हर दो अजामी देहद वजा पस्तो राखा नह बानु कुनाद सुनी दई सुखन रा हमी शुद्रवा ब्यामद ब शहर शाह हिंदोस्ता निशस्तांद बर

या श्रेष्ठ गर्दन से शाह ब अबरू चो अबरे बहारा कुनाद ब मैगा चो अस्तीर बारा कुनाद रुखे चू लासीहे देहद माहिरा बहारे गुलिस्ता देहद शाहरा बाबरू कमाने शुदा नाजनी ब चश्मद कैबरे कहरगी ब मस्ती देहद हाम चुनी रुए मस्त गुलिस्ता कुनद बूम सोरीद दस्त खुशे खुश जमालो कबालो हुसान ब सूरत जवानस्त फिक्रे कुहान यके हुसन खां बूद ओ जाफगा ब दानश हमी बूद अकलस जवान कुनद दोस्ती बाहक मह यक दिगार के लैली व मजनू खिजल गस्त शार चो बायक दिगर हम

निबखानी नाहि असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैयता है बूजरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैयता है बांदरी के जैया कहे आदस फिरैयत है तभूत के पछानी है। जल के तरैया को कंगेरी सी कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैयता है कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाभ

न्योली गरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाजत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमात शीतल न सूरज दे तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद जारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल मास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है।

बैठ लाए तारी कहूं लोभ के खुमारी सो अनेक गुण गावे कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी कहूं दंड धारी हो के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है ना जन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंजर अनेक दा पुकार ही कहा भयो जब कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टक।

ताप के सहित जो पे पाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पे पायत अजाप देव पूजना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत कतराण की परत।

करता करीम सुवे रस करहिम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेको भ्रमा है देवता देव जज कंदरब तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेष को प्रभाव है।

जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते काछ माछ केते उनको करत भज केते अच अच हो।

तेज ज्यों अतेज मैं अतेज जैसे तेज रीन ताहि तय उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है कित गंग बासी कित मधि नामका निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हरे जो अचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हरे छापसी गाए हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

नमो अंग न मातंग न कर्मंग न बर्मंग न जन्मंग न जातंग द्वैखंग वेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपं न रंगे नमो आद भंगे।

कहूँ देह दुख कहूँ औखति रोग के शोक सो कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व के नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या।

सन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतबान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय द्रास वास नहीं देह नाश, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो नंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कते, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई गल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत खाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तद पावत न पार, कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई ऊर्ध मध्य पावक जुलंत, कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद, कई गोक काव कथत कते, कई यज्ञ होत्र कई बोनहार, कई कर्त कूट मृत को आहार, कई कर्त साक पै पत्र भच, नहीं तदब देव हो वत पतच्छ, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जगयाद करम, कहूँ अग्न होत्र कहूँ।

कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई।

बिन भगत सकत नहीं भरत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन।

देव बरंग सब की नीदीन जमीन जमाजे रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख दुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयं जय ज अतन पात न मात बितंग जे रचयं छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैक न दाग न दोख गणं जय अंड दे ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंग नखंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभु जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जछ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर थातिक पांत गणंग भूत भविख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काद पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न शीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली रूप राग रंग है, न द्वैग है न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा, छिज तेज मानिए, न आद है न व्याद है, अगाध रूप लेखिए, दुख है अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है, न चित्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपि विषेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में।

रूप रागना रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त गीड विखे बसे सब ठोर मैं निर्धार जात पातना ताद जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठोर विखे रम्यो।

सनक औ सन के सनंदन पाव ही न सेव जछ किन्नर मछ मानद मृगौर गा पार नेत नेत पुकार ही सिव सकरौ मुख चार सर्व सबद पतार के दर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूरत अताप जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहयो बिराज धीराज राज प्रवीन जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्ण के विखे विराज सूत्र भी वह नाहे ऊढ़ गौड न भी लभी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मत उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल कर

सोत सोत हटे सब असुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब, पड़त पड़त थके महाकव गढ़त गाढ़ अनंत, हार हार कहियो सबू मिल।

भूमकाज लेथ ले महमानीय जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकांद अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीन सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमकाज लेथ ले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद वेवना पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत वे मुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

देव सर्वं विचार जिम की हो देव सर्वे मसार जब तभी हो तन भय अनंत ताप हो जब हम हो तरण अनंत रंग हो तार तागर जिम तागर बाल अधवर हो तन भय दलाल तागर अंत दुग दुग भय जय देव नेत्र सब वे दुग भय नेत्र नेत्र यूपे नीच की नो नाम सब वाई पार जिया को ब्रह्म भाव सब जीव जन तया जन तया मन मूड की उन्हें सेव अंतराय मूड करे मूड पत्र पूजा ग्रंथ करे से मूड पत्र पूजा ग्रंथ करे बोले सूर साधा कराय ब्रह्म एक रूप ब्रह्म के लखाय एक रूप अंश जले जाय प्रकाश दाता दुरंद देहद में ना सब लोक सुगंध रह रूप बन भय काल गत है स्वरूप बन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख करुणा निधान का दयाल बंधन विहीन रत बंधन नादार अखंड रूपम ईश्वर पद सार जय जय दरबार में आए भरम जय रह जल रूप नहीं है कदम जय सत्यम करो रही सार अच्छा स्वरूप प्रसल हो आधार स्वरूप जान जन जाय जाय रूप रेख है बात निकाल जाय कौन रूप रेख है नाम महाकाल है कौन जा दे दे सत मित्र नहीं तो सत प्रणाम जय सत मित्र नहीं पुत्र करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चरण नहीं रंग रूप जय जय भेद नहीं कहन कार सब जीव जन दे दे तरी कृपाल सब जीव जन दे रंग सिद्ध स्वरूप उत्पन्न पावे सिद्ध रूप जय रूप रंग में आज ग्रंथ रंग जय दे दे जन भेद जन दारा जय जय जन नहीं पुत्र अंतरंग जय जय जन नहीं पुत्र अंतरंग जय जय जन जय जन पैर पुजर दीवा योग योग है तय होता पार दीवान तो होता है पावता कई गोट इंद्र जय मान हार कई गोट उड़ जन की यार दुआ कई गोट प्यार ब्रह्मा आनंद जय जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय जन जय

0: कीट पतंग पुरंग भुजंग भूत भेद भवंग भुजंग भेद देव देव भेद भवंग भेद भेद देव देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव भेद भेद देव श्री पद्मावती है राम रोदन रोग न मोहन रोग राम रोदन रोग न मोहन है देह रीन सुने बोधन ने है दृढ़ लगे सच है बोधन ने है जान को दे दा जान को दे दा जमीन को दे दे मान को दे दे दा ये को डोल के मैं तुम रे सर सुन दा श्री को डोल पत ले तुम रे सुन सुन कर रोग न दे अर जो खन दे दर जो खन दे बम दे दर जो खन दे जो खन दे बावन बावन बावन बावन बावन बावन बावन बावन बावन राहत है अपनों करता कर बाप संभोहन बेटन बाप दे और बाप भगवान कहे दो सौ सौ बेट नीचे पट बीत पट जाओ सौ सौ बेट जय जब जंग सुधा न दे बाप दे तुम ऐसे ही सुधर जाओ दे भूमा दे बाप तुम ऐसे ही सुधर जाओ जब जब जंग सब ऐसे करने आवे तुम ऐसे जंग सब ऐसे करने आवे पास के नहीं पार प्रभा हूं को नहीं आई निधन वेद प्रभा हूं न के सब ही सुधी रस रहा रे पर हर हर ही आवे हर पर हर से तो मन से तो मन आ रे से तो मिलो ना जो पर दिन तेरे को सब देव लोग में सब हर पर हर हर पर आयो हर पर हर हर आयो पाय सके नहीं पार उमा पद से दुकान सके नहीं पार आयो ध्यान से रूप से गुरु मन में दे ओ बंद को जो रूप से गुरु थारे हो जे को वेद गुरु मन जब दे ओ गुरु मन वेद वेद गुरु सब तो जे मारे में मेरा पार सके हो मेरा वेद मन वेद वेद ने पाय तो के और ने को के तदाग रूप न रे से रंग न सा कर सब रूप न दे न रे आदा न आदा सब कम सब एक कर मेरे जब तो नहीं को का रे एक जदी दे तो बोट की है से हम दे बोट की दे बोट की दे से दे दे और मेरे सब बोलन के दरे न मिले हर प्यारे बोलन के दरे ले हर प्यारे आसन कोट करे स्थान करे भवनास करे मुक्त करे दीन दयाल काल बजे बिना ने भवन के धाम से धारे धाम से धारे त्वा प्रसाद कबित अमृत अतर के तड़िया छत छत के धरे छत तड़िया छत तड़िया के सब जन के सहारे में चल के भैया मन मान के बढ़िया वैसे के भैया न के भैया मजाल है दे भैया है कटैया जा मजाल है जोत के जतैया विरुद्ध के बटै जो मां के बुद्ध के लवैया मन के मान लिया के मान बुद्ध के के भई हम के ना तम हम को धन है दादा देव काल हम के काल दादा काल हम के काल है पूर बिन पार पावन गुलाह माल रे गोगर दे जी गुलाह वे तेरे ना को रे जो दे जो को ना दे पद साधना के दे जो बिन दे साद पले कर दिया रे के बिन जमा रे के कर पिया कर के रंगी मान अंधारी को रे जाने बचन के बचन में बचन ने जाने मन के रचा में दे ले रे मन तो सब कर दे ले दे ले बचन धर्म धर्म के पहचान धर्म धर्म है बंग के बंगाले फिर बंग के फिर बंगाले दिल के दिल वाले तेरे जगन में फलत लिया रे बंग के रियल में हम देश ते नंगे लो मेरे बंग से बुद्ध रे बाबा पुंज को मिल बन है बुद्ध रे बाबा को ठाको न गावे ज्ञान जी के से दुख को निभावे जे न आए दुख दे के दब जे न जाए जे न करे ता युद्ध के पूर्ण न पता जे पायो सब बन न बल पूर्ण न पायो सब बन न बल पूर्ण बुद्ध रे बता न बोल सुरे सदान वाने को मन जगन को सुरे को बे सदन की न रंग न रंग न रंग न रंग न रंग न केते महादीन केते व्यास से प्रवीर के मेरे को लेन का से जस बिना हिले तो मेरे को तेरे विचार चना बुरत ना बाबा बहन विचार ना बाबा ने रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश रूप है के सिद्ध का को बाद है के बुद्ध हम संसार के तन देव को देव को है के भगवान है देव है को देव है के सब तरह को सार देव है को देव है जान को बतैया है मान को देव है जान को बतैया मान के को देव है को जन है तेज को वचन है हम धन भगवान है देव है प्रबन को मन है के सो है न रही है को मन है के विश्व को भरण है के पता को हन है के सो को भरण है के तेज को भरण है के सो को पाइया है पार पार को पार लोगी जत्र बिचारा बिचारा को देव निरंजन प्रवीण राजन के राजा महासाज होंगे साजा महा के गोविंद को जो राज धरे या ब्रह्म काल के कामना के कारण या के बुद्ध का के राम के सिद्ध का के साथ बुद्ध के काल है चल के के काठी के साथ के राव दिखा जगत से छत्र के साथ छगर के छत्र काल के बुद्ध के गोविंद के हर से से मारो मई के दास के सेना वाले के हर धाम के चले से सेना वाले के के साथ चले साथ द्वारा से लाओ कठ रूप के से राम बोल थोड़ा सो सो रंग बाद दी के वाली रूप के चंपा से बाद रे को ज्ञान दे से ज्ञान जब बट की बदल
1: प्रसाद

काहे रे मंचत वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सै को सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ी अवर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा।

नाहे। जीए जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरडै भैले निवासा, पाणी पावक तिन है किया। पंक जो मोहो पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मोड़, मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हां जती सती।

असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड़ कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का छीनत नह भिव आप नी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज झेरज से तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भय संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस ध्वजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार जिनत मैं संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दल हो उबारी सर्प ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजदुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख ना तसै ब्यापत कोई अड़ल।

कह चौ पई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कहे जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र।

बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार भारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह चै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौले हो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो

बाहे की लाजियस गोविंदास तुहार दोहरा राज करेगा खालसा की रैंक होए पावे समिलेंगे बचे शरण होए।

0: विश्राम रहाओ।
1: प्रभ के सिमरन गर्भ नभ से, प्रभ के सिमरन कार पर हरे,
0: प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे,
1: प्रभ सिमरत किस बिघन न लागे,
0: प्रभ के सिमरन आंदिन जागे,
1: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे,
0: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
1: प्रभ का सिमरन साध के संग,
0: शरण निधान नानक हर रंग,
1: प्रभ के सिमरन निध सिद्ध नौ निध,
0: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बुद्ध,
1: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा,
0: प्रभ के सिमरन बिन से दूजा,
1: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी,
0: प्रभ के सिमरन दरगह मानी,
1: प्रभ के सिमरन होए सुफला,
0: प्रभ के सिमरन सुफल फला,
1: से सिमरे जिन आप सिमराए,
0: नानक ताके लागो पाए,
1: प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा,
0: प्रभ के सिमरन उदरे मोचा,
1: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे,
0: प्रभ के सिमरन सबके सोजे,
1: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा,
0: प्रभ के सिमरन पूरा रासा,
1: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, प्रभ जी बसे साध की रसना,
0: नानक जन का दास अंदसना,
1: प्रभ को सिमरे से तन मनते,
0: प्रभ को सिमरे से पतवंते,
1: प्रभ को सिमरे से जन प्रवान,
0: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान,
1: प्रभ को सिमरे से बेमोताजे,
0: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे,
1: प्रभ को सिमरे से सुखवासी,
0: प्रभ को सिमरे सदा विनाशी,
1: सिमरन से लागे जिन आप दयाला,
0: नानक जन की मंगेर वाला,
1: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी,
0: प्रभ को सिमरे दिन सत लिहारी,
1: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावी,
0: प्रभ को सिमरे दिन सुख बिहावे,
1: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जी।

0: प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन ने चलियासन, प्रभ के सिमरन चुनकार,
1: प्रभ सिमरन
0: सिमरे से जंजिन को प्रभ मया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन भे सिज्जति दाते, हर सिमरन तारी सब तरना,
1: हर सिमरन हर कारण करना,
0: हर सिमरन क्यों सगत

0: को अपनी शोभा डोरे
1: संग हमें छोरे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साजना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दस प्यासा
1: मानता के बल बल जासा।

0: चढ़ना सो स्थिर कर्माने
1: जो वंश दूर पराने
0: छोड़ जाए जिसका श्रम करे
1: संसाई पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तो
1: प्रीत संग संग
0: अंध।

0: जिसकी बस्ती सागे रखे उसते चोगन करे निहार
1: नान साहिब सदा दयाल
0: माया के
1: सर परोवर जानने
0: बिरख छाया सो रंग लावे जो दिसे सो चालन हार बटाऊ सो जो नावे ने मन हर के नाम की प्रीत सुख जाई
1: नीचे
0: आकांगन कुटुंब

रघुपति जय प्रसाद क्षत्रिय अमृत खाए जय प्रसाद सुगंध तन लावे जय प्रसाद बसे सुख मंगल जय प्रसाद ग्रह जय प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे जय प्रसाद सुख सहज सोई जय जय प्रसाद तू सब को माने जय प्रसाद तेरो रहता।

0: जय प्रसाद करे पुन बोधाम जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: प्रभु को साकारी
0: जय प्रसाद तेरे सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरो सदा
0: जय प्रसाद तेरी नीति जा
1: सो प्रभु सिमरो सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: प्रसाद
0: जय प्रसाद सुने करन नाथ
1: जय प्रसाद देखे
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद
0: जय प्रसाद हस्त कर चले
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले
0: जय प्रसाद

0: आप जपाए जपे सो नाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दया दे कमल बिगास,
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए,
1: प्रभु दया दे मन उत्तम होए।

0: आपे जाने साथ बढ़ाई साथ के संग ना कभू धावे साथ संग बस गोचर लह साथ के संग बसे तानुचे साथ के संग जड़े सतरम साथ के संग पाए नाम निदान साथ के संग सब कुल उदारे साधु के संग सो तन पावे साथ संग धर्म राय करे सेवा साधु के संग पाप पलायन साथ के संग सरब कान गम
1: साथ के संग सफल जनम
0: साथ के संग नहीं किस कार
1: दर्शन बेटा होने
0: साथ के संग कडू खत हरे साथ के संग यहाँ हुआ सुहेला जो इच्छे सोई फल पावे पार ब्रह्म साधी बसे साथ के संग सुनो।

साथ के संग मिटे सब रोग, साथ की महिमा भेद न जाने, साथ की उपमा तय गुण ते दूर, साथ की शोभा का नाही।

0: वैष्णो सोजी सुपर सो प्रसन्न
1: की माया दे होए
0: कर्म कर तो वे न करम
1: इस वैष्णो का निर्मल
0: काहू फल की इच्छा नहीं बचे
1: केवल भगत कीर्तन संग रचे
0: मन तो अनंतर सिमरन गोपाल
1: सब पर होवत कृपा
0: आप गिरे भरे नाम जपावे
1: नानक को वे सो परम गत पावे
0: भक्ति पवन भगत का रंग
1: सकल त्यागे दुष्टा संग
0: मन ते बिनचे सगला परम
1: पूजे सगल पारम
0: सास संग पापा मन खोवे
1: भगवती की मत उत्तम हो
0: भगवान की टहर करे इतनी
1: मन तनर वे बिसन परे
0: हर के चरण ही देव सावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन पर बोधे
1: राम नाम तमे सोधे
0: राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जगे
0: हर की कथा

0: जुगत की तेन पाइये धर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
1: नाम सतराम
0: आत्म राम किस नजरी आया, सदा

0: की आज्ञा आत्मिता भी
1: जीवन मुख सौगा
0: कैसा हर कैसा उसो
1: सदानंद नहीं बियो
0: कैसा सुन तैसी उस माटी
1: कैसा मृत तैसी बिखाटी
0: कैसा मान तैसा अभिमान
1: कैसा रंग तैसा राजा
0: जो बरताए साई जुगत
1: नानक को पूरा कहिए जीवन मुख
0: पार ब्रह्म के।

0: कई कोट कृपण कठोर कई कोट पर द्रव कोई रे कई कोट माया श्रम माए जी जी तुलावो तित लगना कई कोट सी जति जोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट शशियर सूर नक्षत्र सगल समग्री अपने सूर तारे कई कोट राजस्थान मस्तक कई कोट के रतन समुंद
1: नाना प्रकार
0: कई कोट की चीर जीवे
1: कई कोट
0: जकिन पिसार सब ते नेरे सबूते दूर
1: नानक का पल पत्रया पर
0: कई कोट पाताल के वासी

0: कर कर देखे अपनी वडियाई प्रभावे मानुगत पावे प्रभावे बिन शास्त्र रखे प्रभावे ता पति तुधारे दो श्रिया का आप स्वामी जो पावे सो कार करावे को मानुचे क्या हुए आवे
1: जो दिस पावे सोई करावे
0: इसके हाथ हुए ता सब कुछ लिए
1: जो दिस पावे सोई करे
0: अनजानत लिखिया मैं रचे
1: पन्ना
0: पर मैं पूरा जय दिस्तावे कर कृपा।

0: करे बख्शीश जो पिंड सब चीज की रास
1: पूरन ब्रह्म प्रभा
0: अपनी बनत आप बनाई
1: नानक जीवे देख बढ़ाए
0: अपनी करण करावन आज्ञाकारी बपरा जियो
1: जो तिस पावे सोई पुंतियो
0: प्रभु ऊंच नीच में बसे।

0: संग न जा
1: वो लश्कर मानु को पर कर यार
0: पीतर दांगा होए बिना
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: इनमें होए जाए पस
1: इसे न बदे आप अंकारी
0: धर्म राय किस करे
1: गुरु प्रसाद जाका मिटे बिमान
0: सोच नानंद दे परवा
1: कोट कर्म करे हो तारे
0: श्रम पावे सगले मिल थारे
1: अनित तपस्या करे अहंकार
0: नरक सुरक फिर मेरा
1: अनित यतन कर आत्म निद्रवे
0: अंदर गए को कैसे गवे
1: आपस को

जो किचकिनों सो अपने रंग बुझे देखे करे विवेक मरे न बिन से आवे न जाए आप उपदेश से समझे आप किनो आप।

0: संत के दुखन हार जा कटे,
1: संत के दुखन जम देने छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मुनि,
1: संत के दुखन सब आते,
0: संत के हते को रखे न कोई।

संत जोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत जोखी सदा सहकाइए, संत जोखी की पूजे न आशा, संत के जोख न दृष्टे कोई, भया की तर मेटे कोई, सब कर किसके ऊपर निहार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सब कुछ वरते जिसका

0: जैसा सा तैसा दृष्टाया
1: अपने कारज में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजा
1: गुर प्रसाद सब
0: जब देखो तब सब किछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई
0: न किछ जन्मे न किछ मरे
1: आपन चलत आप
0: आवन जावन दृष्ट दृष्ट
1: आज्ञाकारिता रे सब।

0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण आपे मेले कृपाल उनकी सेवा सोई लागे
1: कृपा करे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: जो
0: कुछ करे सुप्रभ के रंग
1: सदा सदा
0: सह सुभाए होवे सोए
1: करने हार बिछाणे
0: प्रभ का किया जन्मी थोड़ा नाम जिसके उपजे तिस्माए समाए आपस को

0: अपन किया कुछ न हुए
1: जिस
0: दिन नही तेरे किस काम
1: मंत
0: हुए ना ही मोए
1: धन
0: मंता हुए क्या को गर्भे
1: असुर
0: राजे को।

0: सचता
1: जो कुछ करे सोई सुखमान
0: कौन
1: बसता ही तेरे संग राम नाम जपी दे माए विश्वकर को रैन तू आया
0: ताज
1: अभिमान रे ओ मन भोल
0: राम नाम हृदय में
1: लाख खेप सुनते संचार तन तन कहे सब को
0: ए
1: व्यापार बिरला व्यापारी चरण साथ के तो साथ की दूर करो इस
0: नाथ
1: सेवा बड़ भागी पाइए साथ दूर रखे और कही संते।

0: आठपति अविनाशी ब्रह्मन मेरा
1: मानो की तो प्रेम
0: किसते परे ना ही किच को है
1: सर्वनिरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गैर कबीर गए
0: पार ब्रह्म परमेश्वर।

0: एक अस्पताल
1: नाम के धारे सगला
0: नाम के धारे पुण्य सब भवन
1: नाम के संग
0: कर कृपा जी सपने नाम लाए रूप सज्जा का सत्य स्थान कतु सज्जा की वाणी सत्क्रम जा की रचना सत्य सत्करणी निर्मल निर्मली सतनाम प्रभ का सुखदाई सत वचन साधु उपदेश सत नीरज बुझे जे कोई आप सत्य सब सत्य जिसकी शिष्य कर निहार करते कि मित न जाने किया दुश्मन विषम पहे बिस्मार प्रभ के रंग राज जन रहे कोई दाते दुख काटन हार जन का सेवक सोवण पागी।

0: राष्ट्रपति चरण सत्सत प्रसन्न हार,
1: पूजा सत्सत सेवदार,
0: दर्शन सत्सत पेखन हार,
1: नाम सत्सत ध्यावन हार,
0: आप सत्सत सब तारी,
1: अपे गुण अपे गुण
0: सब सत्सत प्रवक्ता,
1: सुर सत्सत जसंदा,
0: पूजन हार को सत सब होए,
1: नानक सत्सत प्रभु सोए,
0: सत रूप दे जिन मानिया,
1: वरण करा दिल मोल
0: जाके जे विश्वास प्रभाया,
1: दात्रिया दिस मन प्रकाया,
0: पैते निरपो होए बसाना,
1: जिस्ते उपजे अस माए
0: बस माइले बस गड़ाई
1: ताको बिना कहना जाए नारायण नानक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रती
1: ठाकुर के सेवक के नेम
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: का सेवक नाम के रंग
0: सेवक को प्रभ पालन हारा
1: सेवक की रखे निरंकार
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारे
1: सो सेवक सा
0: अपने जन का पर्दा टाके
1: सेवक के सर पर
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे प्रभ के सेवक को न पोचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया निकी कीरी में कल राखे जिसका सास न काटत आप मान जतन करत वो पाप मारे न राखे अवर न कोई काहे सोच करे रे प्राणी बारंबार बार प्रभ जपिए नाम तंगीन गुरु मुख पाया नाम तन नाम और उपरंग
1: नाम सुख नाम का
0: नाम रस जो जन तृप्ता ने
1: नाम समान
0: जगत बैर सो जन

0: अष्टपति सतगुर सिक्की करे प्रतिपाल सिक्की गुरमत मनहिरे सतगुर सिक्के बंधन काटे सतगुर सिक्को नाम तन दे सतगुर सिक्का हलत पलत सवारे
1: सिक्के
0: ग्रह सेवक गुरे आपस होकर किच न जनावे मन वेचे सतगुर।

ये बाए कुस्तत नेक काहु बोल न पोचत प्राणी मेरा हार निर्वैर सुखदाई अनिक पगत बंधन नित करे सत परिहारी सतगुरु अपने ए हरस पावे।

0: दीपक प्रकाश
1: नानक परम हो दुखे ते
0: तपत माए ठाट वरताई
1: नन पया दुना ने
0: जन्म मरण के मिटे अंधे से
1: साधु के पूरन कैसे
0: हो चुका निरपोए बसे
1: नन पया मन देखे रसे
0: जिसका सातिन कृपा।

अष्टपति संजना मिल करो विचार और समीत विचार संचो हो भगवान एक आसरा को मनमाए जिस जन को चार कुंड उड़दावे जिस सुख को जिस बाचे मीत जिस शोभा को करे बड़ी करनी अनिक पावी रोग न जाए शर्म दान मेर नाम निधान मन पर बोधो हर के नाये ताको बिगन न लागे कोए कल ताती ठाडा हर नाओ बोबिन से पूर्ण होया चित घर जाए बसे अपना सी

0: सरप पैकुन मुकद मोक पाए अनिक राज भोग बने आई वो भोजन का प्रसंगी
1: रसना जप्रिया
0: पलीशु करनी सो

0: प्रभ केवल तुनी जब के हर अगम पार जब निर्गुण प्रभ से सुभाए जब आपे आप अपनी ज्योत रे अपन चली सब कर निहार
1: नानक ठाकुर अगम पार अपना से सुखा अपना सब
2: जन्म मरण को का बिना
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: जब
0: विगत गोचर प्रभ का जब नाग निरंजन गोचर का दे अपन आप आपी चढ़ जा जय निर्मल पूरक पूरक पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे करण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: जय
2: सर्व कला
0: जब अपन आप

दयाल सिमर सिमर नाम बारंबार उत्तम श्लोक साध के वचन सुनत कमावत हो तुदार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द नाथ बाजे प्रगटे गोपाल महात्य माथे शरण जोग सुनसर नहीं आए मिट गए बैर बे

गुरु पंथ खालसे दी दिनों दिन चढ़ती कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।

0: नारक में सरे काए करे जब जब फरवटाए ज्ञान बुझता है सजरु सितो का तरमे रथवा त्र त्र जते का जोर रथवा दो फरत पेगा सदग रथवा कज रथन का कूड रथवा महल्ला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी सुतमे आचे साच